खुदा तुझे किसी तूफान से आशना कर दे कि तेरे बाहर की मौजों में इस्तराब नहीं, तुझे किताब से मुमकिन नहीं फराग कि तू किताब ख्वाह है मगर साहिबे किताब नहीं।

0: part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
4: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रेडफोर्ड 7230303 जीरो।

0: ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ 2 पौंड ना कन सलाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Want your business to reach more customers and stay front of mind? Advertising with Sunrise Radio. Connect your brand with a loyal, engaged audience across Yorkshire and our growing DAB network. Radio builds trust, increases awareness, and gives your business repeated exposure throughout the day. And right now, as Sunrise prepares to expand even further, we're offering a limited-time special advertising package. Promote your business today with Sunrise Radio. Call 012-74-735-043.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश मैथ्स ESOL कोर्सेज, चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230300 ब्रेडफोर्ड 7230300।

कलियां ता गौंदे मैं बहुत वेखे, बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा। मां हुंदी ए मां, छेती कर सरवण पुत्रा, गौंदा कोना कोना अज वी शहरां गलियां दा। माण माणक दा बनाया जिहड़ा सच्चे रब ने, ना ही योधियां दा ना ही वलियां दा। लोकी रहबरां दी रावां विच फुल सुट दे, मान माणक नूं मिलिया हत्थां दियां तलियां दा। सस्सी सोहणी महिवाल ते हीर रांझा, किस्सा सच दा गाया रूहां भलियां दा। मैनू माणक दी गोदी च बैठण दा जिहड़ा माण मिलिया, मैं दान कीता होना जरूर सोने दियां फलियां दा। किस्से कलियां ता गाउंदे बहुत वेखे, बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा। बादशाह इको सी लखां च माणक कलियां दा। उस्ताद श्री कुलदीप माणक जी नूं समर्पित चंद शब्द।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: For your family treat this summer,
3: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
2: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
3: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
2: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
3: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrison's and quality local grocery stores.
3: The classic hits. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: में परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्दा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Have you tried Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Caratino Better Ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking and is great for making healthy and delicious family meals. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?

0: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service, raise your organisation's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner Sunrise Radio.
1: कुल्लू नफसेन जायकतुल मौत।
2: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डारफील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रैडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 ब्रैडफोर्ड 7230303

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमता ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।
2: Do you ever wish your family's diet could be that little bit better? Then why not try Caratino Better Ghee, the healthier, low-cost butter ghee alternative? Caratino Better Ghee is around half the price of pure butter ghee, but it's cholesterol-free and lower in saturated fats. Better ghee tastes just like the finest butter ghee in cooking, so it's perfect for making all your favourite recipes. Look out for Caratino Better Ghee at Tesco, Asda, Morrisons and quality local grocery stores.
3: It's a classic hit. Flashback. Flashback. As we go down memory lane. Where were you when you first heard this?
4: Tonight,

किया लॉस एंजलिस 12 मई 2000 जहां हम 6 पंटर पहली बार मिले थे। हमने सोचा था कि दुनिया जीत लेंगे, अपनी लग गई।

0: भाग्य दोष पर उड़ते पृंदु के परों की ओट में और दुनिया के गोशे गोशे में सुनी जाने वाली आवाज ये आपके अपने सनराइज रेडियो की है जो कि 103.2 एफएम पर और 100.6 एफएम पर पूरे वेस्ट यॉर्कशायर में सुनाई देता है। अगर आप डीएबी पे सुनना चाहें तो आप ब्रेडफोर्ड, कीतले, इल्कली, स्किप्टन, लीड्स, हेलीफैक्स, मैनचेस्टर, ईस्ट लंकाशायर, ब्लैकबर्न, बर्नले, डार्विन, नेल्सन, अकरिंगटन एंड मिल्टन कीन्स में आप सुन सकते हैं। अगर आप एप्पल ऐप स्टोर और गूगल प्ले स्टोर पे सुनना चाहें तो भी सुन सकते हैं। और अगर आप दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं सनराइज रेडियो को सुनना चाह रहे हैं तो आप हमें वेबसाइट पे सुन सकते हैं। वेबसाइट का एड्रेस रहेगा www.sunriseradio.fm पर पूरी दुनिया के कोने कोने में आप सुन सकते हैं। आमिर शहजाद की तरफ से अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू यू ऑल। हम उम्मीद रखते हैं जहां तक हमारी आवाज पहुंची होगी आप सबको खैरियत के साथ पाया होगा। अगर खुदा न खास्ता बीमार हैं तो हम दुआ करते हैं अल्लाह आपको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमाए। साथ में ये भी उम्मीद रखते हैं आपकी सुबह का आगाज अच्छा हुआ होगा। दुआ करते हैं आपका दिन भी अच्छा गुजरे। सबसे पहले शुक्रिया अदा करना चाहेंगे अभी का जिन्होंने पिछले दो घंटों से आपके लिए बहुत ही प्यारा सा प्रोग्राम पेश किया। अभी बहुत शुक्रिया आपका। तो दोस्तों मेरा और आपका साथ रहेगा ठीक दो बजे तक। मिले जुले गीत होंगे और आपकी डेडिकेशन होगी। तो चलते हैं प्रोग्राम को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम दोस्तों के नाम जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं।
1: The Hit of the Hour is brought to you by Sophie Jewelers, with a wide range of designs of all kinds of jewellery. Sophie Jewelers, 119-21-21, Oak Lane, Bradford 9. Call 01274-056-01.

0: जी दोस्तों, अभी आपने प्यारा सा गीत सुना हिट ऑफ द आवर की शक्ल में। इसके साथ ही चलते हैं टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही है 11:14, यानी कि 11:14। तो जनाब, कमर्शियल का टाइम हो गया है और कमर्शियल के बाद आप एक प्यारा सा गीत सुनेंगे। और ये गीत जो प्ले करने जा रहा हूँ, ज़्यादातर गुलाम भाई का स्टाफ जो है ये पसंद करता है, उनके नाम करेंगे। और उसके बाद जनाब तारिक ज़ुल्फ़ी साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और आपने जनाब तमाम दोस्तों को सलाम अर्ज़ किया और सबके लिए गीत सुनना चाहा, स्पेशली ईरा ख़ान साहब के लिए। और ईरा ख़ान साहब, आपने भी फ़ोन किया जनाब, आपसे बात तो नहीं हो पाई लेकिन आप फ़ोन कर रहे हैं। तो चलते हैं जनाब कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद ये प्यारा सा गीत होगा अमरीन साहब आपके नाम भी। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।
2: दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1, टेलीफोन 7230300, दास ब्रेडफोर्ड 7230300।
3: Thank you for making Sunrise Radio your favorite Asian radio station.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना पामला जैन और उदर नारायण की आवाजों में, तो लगे हाथों एक और सोज वाला गीत सुन लेते हैं। मुझे ये गाना बहुत अच्छा लगता है और काफ़ी अरसे से प्ले नहीं किया, तो चलिए थोड़ा सैड गाना हो जाए। आप सभी दोस्तों के नाम जो इस वक्त सन्ना रेडियो की निशरात को सुन रहे हैं, तो चलते हैं सुनते हैं अगम कुमार निगम की प्यारी सी आवाज़ में ये प्यारा सा गीत। सोनू निगम के वालिद साहब हैं, ये बहुत अच्छा गाते हैं, तो इनका गीत सुनते हैं या सभी सुनने वालों के नाम करते हैं।

नगम कुमार निगम की प्यारी सी आवाज में दोस्तों आपने बहुत ही सोच भरा गीत सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा इस गीत को। और अब जनाब वक्त एक बार फिर कमर्शियल का हो गया है और हीरा खान साहब शुक्रिया फ़ोन करने का जनाब। गपशप हुई, अच्छा लगा आपसे बात करके। आप जनाब अपने तमाम दोस्तों के लिए स्पेशली तारज़ुल्फी साहब के लिए गीत सुनना चाहते हैं तो कमर्शियल के बाद जो गीत होगा वो आपकी जानिब से आपके दोस्त जनाब तारज़ुल्फी साहब के लिए होगा। उसके बाद सोनिया बहन बर्मिंघम से आपने फ़ोन किया, शुक्रिया फ़ोन करने का। और जनाब थोड़ी देर के बाद आपके लिए भी कोई प्यारा सा गीत पेश करता हूँ। तो फ़िलहाल ये गाना मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम होगा। तो चलते हैं सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है।

प्यारी सी शायरी के साथ आपने सुना अलका याग्निक और उदित नारायण को। और अब चलते हैं अगले गीत की जानिब। प्यारा सा गीत है मलिक इम्तियाज साहब, आपकी पूरी टीम इकमाज मुनीर वसीम इमरान मुजाहिद अल्लाह दिता उमेर बाबर इफराज आप सब के नाम जनाब। और उसके बाद इसी गीत को नजर करना चाहूँगा। इकरा जी आप सुनना चाहती हैं नजमा इफ़त नाजिया हमीदा रुबीना बुशरा ताजीम जायदा और साइमा के लिए आपके नाम भी करेंगे। और आजरा जी आपके नाम भी करेंगे, अमूना जी आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत आप प्यारे दोस्तों के लिए।

0: जी दोस्तों, अभी आपने मस्ती बरागी सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। और अब जनाब वक्त जो है वो कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद आप जनाब सुनेंगे एक सदाबहार पुराना गीत। और पुराना गीत जो है वो किसकी नज़र होगा जनाब, ग़ुलाम भाई सफ़ीउल्लाह भाई और वाजिद भाई एड्रेसफील्ड से, हीरा ख़ान साहब, तारिक ज़ुल्फ़ी साहब और जनाब जो हैं अपने मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम और दीगर दोस्तों के लिए, चौधरी मनीर साहब चक्की वाले, महबूब इलाही साहब, चौधरी मुजफ्फर साहब, इन दोस्तों के नाम भी करते हैं। और कमर्शियल पे जाने से पहले टाइम चेक कर लेते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 11:44, यानी कि 11:44। तो जनाब चलेंगे कमर्शियल की जानिब। कमर्शियल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मन पसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

0: कोई परोंठे शुरूठे नई मिलन लगे, किचन विच सारा सामान मकिया पिया है, आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने आ, ते सारी शॉपिंग करके ले आने आ। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थो ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर साउथ फील्ड रोड ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446।

जी दोस्तों, अभी आपने मेहदी हसन की प्यारी सुरीली आवाज में ये प्यारा सा गीत सुना और साथ में जो हूं कर रही थी वो हमारा चन्ना थी। तो जनाब, अब क्या है कि हमें कॉल आई, मोबाइल के आखिरी जो तीन डिजिट है वो 966 है, तो वो क्योंकि नाम नहीं दर्ज है इसलिए आप मिस कॉल दे रहे हैं, तो मुझे पता नहीं कौन है ना, तो अपना नाम पहले रजिस्टर कराइएगा और उसके बाद ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके नाम भी गीत करते हैं और तमाम सुनने वालों के नाम गीत करते हैं, तो इंजॉय कीजिएगा इस प्यारे से गीत को।

0: दोस्तों साथियों ये आपका अपना सनराइज रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और प्रोग्राम के दूसरे हिस्से में आगे हैं। उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम का पहला हिस्सा आप साथियों ने पसंद किया होगा और कोशिश होगी इस आवर में आपके लिए अच्छे और प्यारे से गीत पेश करने की कोशिश करेंगे। तो जनाब प्रोग्राम के दूसरे हिस्से को शुरू करते हैं हिट ऑफ द आवर के साथ। हिट ऑफ द आवर का गीत यासमीन साहिबा, फ़ोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया, आपके नाम करेंगे। और आपके साथ साथ जनाब वाजिद भाई एड्रेसफील्ड से आपने फिर फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी, आपके नाम भी करेंगे और तमाम सुनने वालों के नाम करेंगे जो इस वक्त सनराइज रेडियो की निशियात को सुन रहे हैं। जंगीर भाई जनाब आप भी फ़ोन कर रहे हैं, आपके नाम भी करेंगे और आपके साथ साथ जनाब साइमा जी आपके नाम भी करेंगे। हाजरा जी आप ज़ाहिर है सादिया जी को मिस कर रही हैं, आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और उसके बाद आप दोस्तों से मिलते हैं।
1: The hit of the hour brought to you by Hope Yorkshire. Telephone 0800 015 7866.

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना, यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। हिट ऑफ द आवर की शक्ल में आप दोस्तों के लिए पेश किया था, और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:13, यानी कि 12:13, तो कमर्शियल का टाइम हो गया है, और कमर्शियल के बाद एक प्यारा सा गीत होगा। जंगीर भाई, आपसे बात करके बहुत अच्छा लगा, और कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपके नाम होगा, और आपके साथ साथ सभी सुनने वालों के नाम भी होगा। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है। अगर प्रोग्राम में शामिल होना चाहें तो आपके लिए लाइनें खुली हैं, नंबर होगा 01274 30666।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओक लेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां गलियां कुमी, ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां, पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो, ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9 आले, जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कहनती लाए, सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड, छापा ते बंगा नहीं, कोई मजदूरी नहीं, ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है, ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

नींदें उड़ गई हैं जब से है दिल लगाया, क्या गीत था कुमार सानू और अलका यग्निक की आवाज़ों में। दोस्तों आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब जनाब चलते हैं जल्दी में आप दोस्तों के लिए एक और प्यारा सा गीत पेश करते हैं मेरी जानिब से सभी सुनने वालों के नाम।

बबल स्प्रे और अलका यग्नी की आवाजों में दोस्तों आपने प्यारा सा गीत सुना। और जनाब आबद भाई कहते हैं आपने ये क्यों कहा कि जल्दी में गीत लगाते हैं, वो इसलिए कि मैंने कमर्शियल पे जाने से पहले भी ये गीत लगाना था और इसलिए मैं चाहता था कि जल्दी में बातें ना करूं और कमर्शियल से पहले पहले एक और गीत आप दोस्तों के लिए पेश करूं। तो आबद भाई आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम गुलाम भाई बहुत शुक्रिया फ़ोन करने का, जनाब शुक्रिया फ़ोन करने का, आपने फ़ोन किया बहुत अच्छा लगा और आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम ये प्यारा सा गीत और उसके साथ साथ जनाब ये जितने भी दोस्त सुन रहे हैं उन सब के नाम करेंगे। तो इन्जॉय कीजिएगा इस गीत को।

0: अभी आपने उधर नारायण और साधना सरगम को सुना। तो दोस्तों अब वक्त हो चुका है कमर्शियल का। कमर्शियल के बाद एक नुसरत फतेह अली खान की आवाज़ में कवाली होगी और ये कवाली जनाब आबद भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम और गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम और अब्दुल क्यूम साफ राइजिंग हॉल से शुक्रिया फ़ोन करने का आपके नाम भी और उसके बाद सोनिया बहन बेमिगम में आप सुन रही हैं आपके नाम भी करते हैं और जनाब उसके बाद हमारे जनाब दीगर जो दोस्त हैं सब के नाम करेंगे कमर्शियल के बाद। तो कमल साहब आपके नाम भी।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord Lord, you can trust.
2: Did you know radio advertising generates an average revenue return of £7.70 for every pound spent? It builds awareness, drives online searches, and keeps your business in customers' minds through regular, trusted exposure. Put the power of radio behind your business with Sunrise Radio, broadcasting across Yorkshire, Manchester, East Lancashire, and Milton Keynes, with even more areas coming soon. And as we prepare to expand our coverage further, ask about our limited special advertising offer. Call 01274735043

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारी सी कवाली सुनी और नदीम मंसूर साहब, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। मैंने गाना क्यू करके रखा हुआ था, वो प्ले करता हूँ और बाद में कोई पुराना गीत रफ़ी साहब का या मुकेश या किशोर कुमार का कोई ज़रूर आपके लिए लगाऊंगा। तो फिलहाल ये गीत मेरी जानिब से तमाम सुनने वालों के नाम और नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी।

0: बहुत ही प्यारा सा गीत और आप दोस्तों के लिए पेश किया और यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा और अब इसके साथ ही टाइम चेक करते हैं
1: सनराइज रेडियो Your soundtrack, your time check.
0: दोस्तों हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 12:46 यानी कि 12:46 यानी 46 पास 12 और कमर्शियल का टाइम हो गया है कमर्शियल के बाद चलेंगे आयशा जी आप फ़ोन कर रही थी लेकिन मैं बातें कर रहा था आपकी कॉल नहीं ले पाया थोड़ी देर के बाद आप कॉल करें तो मैं आपकी कॉल ले पाऊंगा तो जनाब नदीम मंसूर साहब आपने कहा कि आप अपनी पसंद का गीत सुनना चाहते हैं तो जनाब अब कमर्शियल के बाद जो गीत होगा आपकी पसंद

का गीत आपके नाम होगा। शुक्रिया फोन करने का। अब्दुल क्यूम साहब फ्राइजिंग हॉल वाले आपके नाम, अब आबिद भाई आपके नाम, गुलाम भाई आपके नाम, जहांगीर भाई आपके नाम, और जनाब ख्वाजा मोहम्मद अकरम साहब आपके नाम, और उसके बाद हीरा साहब, ताजुल्फी साहब और सफीउल्ला भाई, गुलाम भाई, आप सभी दोस्तों के नाम ये गीत, और इसी गीत को अमरीन साहब आपके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शियल, कमर्शियल के बाद गीत, गीत के बाद मेरी और आपकी मुलाकात होती है, सुनते रहिएगा।

0: कोई परोंठे शुरूठे नहीं मिलन लगे। किचन विच सारा सामान मकिया पिया है। आटा चावल दाला गोश्त सब्जियां हर चीज लेन जाओ ते अद्धा दिन लग जाना है।
1: तुसी फिकर ए ना करो जी, हने ए एशिया सुपर स्टोर जाने ते सारी शॉपिंग करके ले आने। उन्होंने नवी ब्रांच भी खोली है जिथे हर किस्म दा किचन ते घरेलू सामान बड़ी मुनासिब कीमत ते मिल जाएगा और गोश्त भी उत्थों ही लवांगे।
0: वाह जी, चलो फिर आके परोंठे भी बनाने। नहीं,
1: एशिया सुपर स्टोर, साउथ फील्ड रोड, ब्रैडफोर्ड 5, टेलीफोन 01274464446.
2: Are you a business looking to make a real difference across our region? The Racial Equity Networking Dinner, REND Leeds Bradford, is seeking sponsors for its not-for-profit event on Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford. Connect with influential leaders from business, education and public service. Raise your organization's profile and demonstrate your commitment to race equity, inclusion and opportunity. For sponsorship opportunities, contact Shaheen today on 0770 6923 788. Official radio partner, Sunrise Radio.

जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना नदीम मंसूर साहब की पसंद पे, तो चलते हैं जनाब अगले गीत की जाने। प्यारा सा गीत है मेरी जन्म से, आप सभी सुनने वालों के नाम जहां कहीं भी हैं, दुनिया के किसी भी कोने में बैठे हैं, आपके नाम किया ये प्यारा सा गीत, एंजॉय कीजिएगा।

जी दोस्तों साथियों ये आपका अपना समना रेडियो है और आमिर शहजाद आपसे मुखातिब है और दोस्तों प्रोग्राम के तीसरे और आखिरी हिस्से में आगे हैं उम्मीद रखते हैं प्रोग्राम के दो हिस्से आप दोस्तों ने पसंद किए होंगे कोशिश होगी प्रोग्राम का ये आखिरी आवर जो है ये भी अच्छे और प्यारे गीतों के साथ सजाया जाए

0: तो दोस्तों अब चलेंगे प्रोग्राम के जनाब तीसरे और आखिरी हिस्से को शुरू करेंगे हिट ऑफ द आवर के साथ। और हिट ऑफ द आवर का गीत आप तमाम सुनने वालों के नाम करूंगा जो इस वक्त सनराइज रेडियो की नशरियात को सुन रहे हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं हिट ऑफ द आवर और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज रेडियो के संग।
1: Hit of the Hour, brought to you in association with Bellevue Residences. Discover stunning 4, 6, and even 8-bedroom homes. Call 0127 428 8252.
2: Sunrise Radio. Hit after hit. The hits of today and the hits of tomorrow. Sunrise Radio. Hit of the Hour.

0: जी दोस्तों, अभी आपने हिट ऑफ द आवर सुना। यकीनन आप दोस्तों ने एंजॉय किया होगा। बड़ी प्यारी शायरी थी और इसके साथ ही चलते हैं, टाइम चेक करते हैं।
1: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
0: हाँ दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां बता रही हैं 1:13, यानी कि 13 minutes past 1। तो चलेंगे कमर्शियल की जाने। कमर्शियल के बाद आप सुनेंगे एक प्यारा सा गीत और उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा।
2: नफसेन जायकातुल मौत।
3: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक। गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस, 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड, ब्रेडफोर्ड 1। टेलीफोन 7230303 दास ब्रेडफोर्ड 7230303।
4: Want to speak better English? Want to improve your maths? Want to earn more money? Shipley College can help. Shipley College's free English, ESOL and maths courses. Whether you want to find work or simply feel more confident, we're here to help. Many courses are free, subject to eligibility. Go to the Shipley College website.
5: Rishi's Vision presents Anand Utsav with Anand Murthy Guruma in Birmingham. Discover practical tools to quieten the mind and experience lasting inner peace directly from the revered master. A three-day non-residential retreat to learn ancient techniques to move from stress to stillness. From 18th to 20th September 2026. Three enriching days power-packed with yoga, meditation, profound talks and much more. At Holiday Inn M6, Junction 7, Chapel Lane, Birmingham, B437BG. Registration required. Limited seats available. For more details, call Benny 07901 831165. Raman 078-341-77866. Usha 0793-178-8062. Visit www.rishisvision.org. Or www.guruma.com.
6: My favourite radio station, Sunrise Radio.
7: I always listen to Sunrise Radio, and now I can listen on the move

जी दोस्तों, अभी आपने अलका याग्निक और विनोद राठौर की प्यारी सी आवाजों में प्यारा सा गीत सुना। और जीत कौर भैना, फोन करने का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत अच्छा लगा अपनी बहन से बात करके। और गाना तो पहले मैंने क्यों करके रखा हुआ था वैसे ही, तो आपके नाम करेंगे। और उसके बाद सीमा जी, आपने भी फ़ोन किया, शुक्रिया आपका भी फ़ोन करने का। आपके नाम भी करते हैं इस उम्मीद के साथ कि आपको भी अच्छा लगेगा। और उसके बाद अब्दुल करीम सफराजी हॉल से आपने भी फ़ोन किया जनाब, शुक्रिया फ़ोन करने का। आपके नाम भी करते हैं। और इसके अलावा गुलाम भाई आपकी जानिब से आपके पूरे स्टाफ के नाम करते हैं, और नवीद भाई आपके नाम भी करते हैं, और आबिद भाई आपके नाम और आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं इस प्यारे से गीत को, और यही गीत कंवर साहब आपके नाम भी करते हैं। तो सुनते हैं दो प्यार भरी आवाज़ों में ये प्यारा सा गीत।

0: जी दोस्तों, अभी आपने बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और अब कमर्शियल का टाइम हो गया है और गाना मैंने क्यों करके कोई और रखा हुआ था, लेकिन बाय चांस एक्सीडेंटली मेरी मिसेज भी सुन रही हैं और मेरी प्यारी बिटिया मुकद्दस भी सुन रही हैं, तो इसलिए वो गाना माइंड चेंज कर दिया। मैं कमर्शियल के बाद गाना और प्ले करूँगा जो मुझे अच्छा लगता है, तो सोचा कि चलिए मुझे अच्छा लगता है ये गाना, तो क्यों ना मिसेज और बेटिया के नाम कर दूं। तो जनाब, उसके साथ साथ गुलाम भाई, आपकी जानिब से आपके स्टाफ के नाम होगा और इस वक्त काफ़ी सेडियाँ काम कर रही हैं, नजमा हैं, इफ़त, नाजिया, हमीदा, रुबीना, बुशरा, इकरा, ताजीम, जायदा और साइमा आपके नाम भी करेंगे, और मलिक इम्तियाज़ साहब, आपकी पूरी टीम जो इस वक्त बड़ी मेहनत और लगन से काम कर रहे हैं। कमाज हैं मुनीर, वसीम, इमरान, मुजाहिद, अल्लाह दिता, हुमैर, बाबर और इफराज, तो आप सब के नाम करते हैं गीत और मूना जी आपके नाम भी करते हैं। तो चलते हैं दोस्तों, सुनते हैं छोटी सी कमर्शियल ब्रेक, उसके बाद प्यारा सा गीत, उसके बाद आपसे मिलते हैं।
1: Looking for a quality home to rent?
2: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
1: Nirmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nirmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
3: For your family treat this summer,
4: visit the Leighton Buzzard Railway and travel on a real heritage steam train.
3: Running every Sunday, plus Wednesdays and Thursdays during the school holidays. On August Bank Holiday, come and join the Pirates Attack and bring your own water pistol.
4: And for the younger ones, don't forget your chance to come and meet Bluey on Sunday, September 6th.
3: Find more details and book your tickets at buzzrail.uk.
4: The Leighton Buzzard Railway, England's friendly little line.

जी दोस्तों, अभी आपने नदीम और अलका याग्निक की आवाजों में बहुत ही प्यारा सा गीत सुना और सबके लिए गीत पेश किया था, स्पेशली अपनी मिसेज और अपनी प्यारी बिटिया मुकद्दस के लिए पेश किया था। और अब चलते हैं एक प्यारा सा गीत। इस वक्त बाबर शाह पे तीन शहजादे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरिफ अली। और सिकंदर अली, आपने मेरे बाल क्या काटे हैं यार, क्या मज़ा आता है, बहुत अच्छा लगता है जब सब कह रहे हैं यार कहाँ से कटवाए ये बाल, तो बहुत प्यारे बाल काटते हो आप यार। अल्लाह आपको सलामत रखे, आपके हाथों को सलामत रखे। और ये गीत आपके नाम और जो दीगर दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम और सभी सुनने वालों के नाम करूँगा।

0: जी दोस्तों, इसी के साथ ही अब वक्त हमें बता रहा है कि जनाब जोहर की अजान का हो चुका है, तो चलते हैं सुनते हैं जोहर की अजान, उसके बाद मिलते हैं।
1: ये अजान ब्रेडफोर्ड और गिर्दनवा के इलाकों के वक्त के मुताबिक पेश की जा रही है। आप अपने अपने शहरों के वक्त के मुताबिक नमाज अदा कीजिए।

0: ये अजान ब्रेडफोर्ड के वक्त के मुताबिक पेश की गई।
1: जी दोस्तों, अभी आपने प्यारी सी अजान सुनी और इसके साथ ही अब चलेंगे जनाब टाइम चेक कर लेंगे।
2: सनराइज रेडियो, योर साउंडट्रैक, योर टाइम चेक।
1: दोस्तों, हमारे स्टूडियो की घड़ियां जो हैं वो बता रही हैं 1:45 से, यानी कि 1:45। तो जनाब, इसका मतलब ये हुआ कि सदाबहार पुराने गीत की बारी आती है और वो प्ले करते हैं। जनाब हीरा खान साहब, आप फ़ोन कर रहे हैं। जनाब माजर चाहता हूँ, मैं बातें कर रहा हूँ तो इसलिए आपकी कॉल तो नहीं ले सकता। आपके नाम गीत करता हूँ, सदाबहार पुराना गीत, और उसके बाद अब्दुल करीम साहब राइजिंग हॉल वाले आपके नाम भी करेंगे, और तारिक जुल्फी साहब आपके नाम भी करेंगे, और नदीम मंसूर साहब आपके नाम भी करेंगे, और गुलाम भाई, आबिद भाई, जंगीर भाई और दीगर सफीउल्ला भाई और दीगर दोस्त जो इस वक्त काम कर रहे हैं, मलिक इम्तियाज साहब की पूरी टीम, उनके नाम भी, और तीन शहजादे बाबर शाह पे काम कर रहे हैं, बिशारत अली, सिकंदर अली, आरफ अली, उनके नाम भी, और दीगर जो दोस्त वहाँ बैठे हुए हैं उनके नाम भी करेंगे। तो चलते हैं, सुनते हैं कमर्शल, कमर्शल के बाद सदाबहार पुराना गीत, उसके बाद दोस्तों आपसे मिलते हैं। सुनते रहिएगा, संग संग रहिएगा अपने मनपसंद सनराइज़ रेडियो के संग।

दी आपने मुकेश की प्यारी सी आवाज में दोस्तों, प्यारा सा गीत सुना। और हीरा साहब आपने कहा कि आपके दोस्त इस वक्त आपके यहाँ तशरीफ लाए हैं, जनाब चौधरी मेहरबान साहब खड़ी वाले। तो जनाब ये आखिरी प्रोग्राम का गीत हीरा साहब आपकी जानिब से आपके दोस्त मेहरबान साहब के लिए और सभी सुनने वालों के लिए, जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं आपके नाम किया। और मुझे आमिर शहजाद को इजाज़त दीजिएगा, अगर अल्लाह ने चाहा और ज़िंदगी ने वफा की तो आपके साथ मेरी मुलाकात कल सुबह 11 बजे होगी। तब तक के लिए हमारी जानिब से खुदा हाफिज, अल्लाह निगबान एंड गुड बाय।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 119-2121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Free courses at Shipley College. Free teaching assistant courses, free health and social care courses, free childcare courses, free business and digital skills courses. Want a good job? Want to earn more money? Want to make your family proud? You can learn for free at Shipley College, subject to eligibility. No qualifications. Didn't go to school in the UK? Go to the Shipley College website.

0: फूलो नफसें जायकातुल मौत।
1: मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस में कफन दफन फूलों का इंतजाम इस्लामी शरीयत के ऐन मुताबिक गुस्ल मैयत के लिए औरत और मर्द मौजूद हैं। टॉप क्वालिटी ग्रैनाइट मार्बल के हेडस्टोन्स और फुल कबर को 30 साल की गारंटी के साथ बनवाने के लिए भी मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस का नाम याद रखें। मुस्लिम फ्यूनरल सर्विस 4 डार्फील्ड स्ट्रीट ऑफ लॉमलैंड ब्रेडफोर्ड 1 टेलीफोन 7230303 दस ब्रेडफोर्ड 7230303।
2: Be part of something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
3: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
2: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
3: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 6923 788.
4: Official media partner, Sunrise Radio.

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: Have you noticed the way fans shout at football matches?
3: Oh, wake up!
2: That's because conveying your message with sound is the most effective way to communicate to the players on the pitch that they're rubbish. And this works in advertising too. You see, research shows how brands that use radio to amplify their advertising are 49% more likely to get noticed. See radio differently at radiocentre.org.

0: Looking for a quality home to rent?
1: Whether you need a 1, 2, or 3-bedroom apartment or house, rent direct from a trusted family landlord with over 53 years of experience.
0: Nearmal Second Group offers a wide range of fully furnished properties, many with private parking, across Bradford, Huddersfield and Wakefield. With flexible tenancy options and homes available now, finding your next home couldn't be easier. Call 01274 744 62 or 077 900 35358. Nearmal Second Group. Quality homes from a landlord you can trust.
2: क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-35043।

0: बहन, तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सूफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स, 1192121 ओकलेन, ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स।
2: क्या आप अपनी अंग्रेजी बेहतर करना चाहते हैं? क्या आप अपनी मैथ्स बेहतर करना चाहते हैं? शिपली कॉलेज आपकी मदद कर सकता है। शिपली कॉलेज मुफ्त में इंग्लिश, मैथ्स, ईसॉल कोर्सेज। चाहे आपको नौकरी हासिल करना है या आपको सिर्फ एतमाद महसूस करना है, हम आपकी मदद के लिए मौजूद हैं। बहुत से कोर्सेज अहलियत की शराइत पर होने पर मुफ्त हैं। मज़ीद मालूमात के लिए शिपली कॉलेज पर वेबसाइट जाएं।
3: Class, it's been reported that if we keep using water like we are now, by 2055 we could be short by 5 billion litres a day.
4: Hold on, miss. 2055? We'll be grown ups by then.
5: We're not having that, are we?
4: No. Oi, hear that? It's water and cans.
6: And fix those drips and drops.
7: And take shorter showers, yeah?
8: Because when we work together,
9: it all adds up.
10: So come on, you lot. Search Let's Save Water.

0: पैरन ये जुतियां ही कसी गियन पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
1: ओहो ते तुसा चाचे कोल जाओ ना।
0: चाचा केड़ा चाचा?
1: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्का नतीला है सिर्फ 2 पौंड ना कानस लाने ना 1 पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
0: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
1: चाचा जूलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 टेलीफोन 01274488935।
2: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a 3-day series of enlightening talks on Yoga Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226. Mirdosh Kumar 07899055525. Gurkirit 07886545970. Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया है। शादी में हर कोई जेवर की तारीफ कर रहा था।
0: सोफी ज्वेलर्स, वो कहाँ है?
1: सोफी ज्वेलर्स 1192121 ओक लेन ब्रैडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274056014। सोफी ज्वेलर्स। तेरी
2: गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
3: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
2: चाचा केड़ा चाचा?
3: चाचा ज्वेलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9 आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ 2 पाउंड ना कनस लाने ना 1 पाउंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवर पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
2: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
3: चाचा ज्वेलर्स ओक लेन ब्रेडफोर्ड 9, टेलीफोन 01274488935।

क्या आप अपने कारोबार को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाना चाहते हैं? सनराइज रेडियो के साथ तशहीर आपके ब्रांड की पहचान बढ़ाती है, सारिफिन का एतमाद कायम करती है और आपके कारोबार को मुसलसल याद रखवाती है। यॉर्कशायर, मैनचेस्टर, ईस्ट लिंकशायर और मिल्टन केन्स में नशरियात और मजीद इलाकों में बहुत जल्द। हमारी महदूद मुद्दत की खसूसी ऑफर के लिए आज ही कॉल करें 012-747-3504-3।

0: बहन तुमने शादी पर दुल्हन का जेवर देखा था? इतने प्यारे डिजाइन तो मैंने कहीं नहीं देखे। पता नहीं कहाँ से बनवाया होगा, इतना खूबसूरत सेट और चूड़ियाँ।
1: मैं जानती हूँ, उन्होंने सारा जेवर सोफिया बहन की सोफी ज्वेलर्स से बनवाया।

0: something extraordinary at the Racial Equity Network Dinner, Leeds Bradford 2026.
1: On Friday the 23rd of October at the Madison in Bradford, join leaders, educators, entrepreneurs and community changemakers for an inspiring evening of discussion, networking and new ideas.
0: Hear influential speakers, share experiences and discover opportunities to make a positive impact.
1: Places are limited. Search REND Leeds Bradford on Eventbrite or call 0770 692 3788.
2: Official media partner, Sunrise Radio.
3: गलियां गलियां कुमी ते पैरन ये जुतियां ही कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
4: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
3: चाचा केड़ा चाचा?
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिनाए स्पेशल ऑफर कंडी मारी न कनती लाए सिर्फ दो पौंड ना कनस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने
3: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता
4: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935

0: Rishi's Vision presents Anand Murthy Guruma in London. Learn timeless yogic wisdom directly from the revered master. Join a three-day series of enlightening talks on Yog Sutras for realizing the true self, 11th to 13th September 2026. Life-changing sessions featuring profound talks, practical insights and powerful meditations at Hariben Bachubhai Nagrecha Hall, 202 Leighton Road, London, E151DY. On Friday 11th and Saturday 12th September, 6 p.m. to 8 p.m. and Sunday 13th September, 3 p.m. to 5 p.m. Free event, all are welcome. For more details, call AK Basra 07977201226, Mirdosh Kumar 07899055525, Gurkirit 07886545970, Usha 07931788062. Visit www.rishisvision.org or www.guruma.com.
1: गलियां कुमी ते पैरें ये जुतियां भी कसी गियां पर सस्ता सोना नहीं मिलिया।
2: ओहो ते तुसा चाचे को जाओ ना।
1: चाचा केड़ा चाचा?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन आले जिन्ना स्पेशल ऑफर कंडी मारी नक्कन तीला है सिर्फ दो पौंड ना कानस लाने ना एक पौंड छापा ते बंगा नहीं कोई मजदूरी नहीं ब्याह शादी ने जेवरा पर स्पेशल डिस्काउंट है ते जे तुसा पुराना सोना बेचना है ते बहुत चंगे रेट पर देने ने।
1: एक बार फिर दसो केड़ी गली केड़ा पता?
2: चाचा जूलर ओक लेन ब्रेडफोर्ड नाइन टेलीफोन 01274488935।

एक शेर तुहाड़ी नजर करदा हजूर। अज दी रात दी खबर दसा, अज दी रात दी खबर दसा, ख्वाब विच सोने आए हुए सन, बड़ी अदा नाल दिता जनाब बोसा, मस्ती विच आज खूब छाए हुए सन, दुख सुख दियां गल्लां खूब होईयां,